ऐसी छोटी जी पंजाबी कविता, दूसरा फिल्मी सॉन्ग दास पेश करने जा रहा है।

कुछ अलोप हो रही हैं तो ना, पंजाबी तो ना, कुछ हिंदी तो ना। पेश करने निर्माण की कोशिश करेगा, दास कितों तक कामयाब होया है, तू दास की हौसला अफजाई करनी।